0: हास्या हो रहा था। अरे वेजी में तेरा प्रॉब्लम आके न बोलेगा जा।
1: La 94.4.
2: Esta canción que les voy a cantar